0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

खै किन लायो हराई जाने माया, कसलाई लायो खै अधुरो गराई जाने माया, अहो पराई जाने माया, अहो पराई जाने माया।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेन्स
2: यो कृष्णसार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने

0: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलीजुली मेडिकल हल, इदगाह रोड, नेपालगंज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
1: ओहो, आज डाई नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेना कहटू।
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना। पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में।

पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन केला कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआई।

धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

0: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
1: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आए।
0: रेडियो क्रिस्ट सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
2: दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया।
1: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
0: और हमार सखी संध्या। कार्यक्रम घर अंगना।

0: राधे राधे सखी,
1: राधे राधे राधे राधे राधे राधे सखी, का हाल चाल है?
0: हाल खबर तो सब बढ़िया है सखी। अब कल कृष्ण भगवान के कन्हैया जी के जन्म भवा है ना,
1: वही तो राधा जी के आज ज्यादा याद आ रहा है। आप राधे राधे का तो कृष्ण जी बेचारे पीछे रह जाते हैं, अब जन्म उनके भवा है, हम लोग राधा जी का याद करा जाते हैं।
0: तो नहीं पता है कन्हैया जी के जो है मन जो है राधा में ही बसा रहा थे।
1: हाँ, तो बेचारे भी जन्म ली ही नहीं ना,
0: तो जन्म ली ही नहीं तो उनके भी जन्म हुई है उसी बात तो ना, ये बिना राधा। हाँ, अब राधे राधे कहे का मतलब है कि अब जो है
1: अच्छा, तो
0: राधे कह दियो तो कृष्ण भगवान की भी आएगा।
1: आता ज्यादा सोचा ना जा, हम यही मारे तो बोल दिया रहा कि मार सखी
0: अच्छा, पूरा लागे थे कि रात के बहुत जागी हो सखी। अब जागे तो
1: कौन है जा। हाँ, सब देखो अपने उत्तर दे जाते हो फिर।
0: नहीं, जागे तो सब कोई जागी नहीं भाई। अब 12 बजे जन्म हुआ है ना, और उसके बाद खुशहाली।
1: हाँ, तो जन्म हाँ। तो 12 बजे करेगा, पूजा पाठ करा था नहीं, अब थोड़ा भजन वजन करा था, 1-2 वैसे बच जाते
0: हैं।
1: और आज सही बात है, नींद तो लगे है। हाँ। आपके तो बिल्कुल नींद नहीं लगे।
0: नहीं, हम कहाँ, हमरे कहाँ नींद लगी सखी,
1: आपके लगी नहीं
0: तो,
1: सकत है,
0: हमरे लगी ना सकत है, सही बात।
1: अच्छा, छोड़ा जाए, हम लोग नोक झोक और हम लोग कार्यक्रम घर अंगना में आएगा है।
0: का कही हम सखी का, हमरे
1: नहीं तो फिर अच्छा तो आप बोल लो।
0: नहीं ठीक है, रह दो ना बोलबे, अब बताओ, आप ही बताओ,
1: बताए।
0: हाँ बोलो।
1: तो कार्यक्रम घर अंगनामा हम लोग आए गए हैं, पता है?
0: नहीं पता है,
1: पता वो नहीं है,
0: नहीं पता ही।
1: चलो ठीक है,
0: आप बताए दो ना पूरा ठिकाना।
1: ठिकाना बता हाँ। दी, रेडियो कृष्ण सार FM से हम लोग शनिचर के दिन कार्यक्रम घर अंगनामा, और जब आप लोग 94 MHz से सुना जाते है तो कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक रहा जाते आप लोग के साथ में, तो ऐसे साथ देते रहा जाए। श्रोता, आप लोगों का पहले सर्वप्रथम हम लोग कार्यक्रम घर अंगनामा स्वागत किन जाते और हमारे सखी भी स्वागत करत ही। देखो याद आएगा उनका तो भूल गई है इतनी देर में, लेकिन कोई बात नहीं है। हम कार्यक्रम संचालिका सखी संध्या
0: और हम कार्यक्रम संचालिका सखी चंदा,
1: तो हम दोनों जना आप लोगों के समक्ष 3 बजे तक रहा जाए। और कार्यक्रम घर अंगनामा आज भी हम लोगों के स्टूडियो में हमारे लोगों के बहन और साथिन स्टूडियो में उपस्थित भई हैं, तो उनके परिचय हम लोग आप लोग उन्हीं के मुंह से सुनावा जाए। तो आपके का नाम है, अपन
0: परिचय दिया जाए।
2: जी, हमारा नाम मीना गुप्ता है। नमस्कार आप लोग का।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: और फिर राधे कृष्ण फिर है, कल जन्माष्टमी रहा है।
1: हाँ, कल जन्माष्टमी रहा है भाई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, देखो हमारे बहनी इधर डराई गई कि उधर सखी के तो खिंचाई हुई गवा, तो इधर कृष्णा जी भी आई के साथ हैं। सखी आपके ऊपर खाली मीके मारे करे रहें कि दोनों जना का जोड़ा कहा नहीं का, आप राधे राधे खाली कहागा यही मारे में।
0: अच्छा, राधे राधे राधे। चलो ठीक है,
1: तो आपके परिचय बता दे, आपके नाम।
2: हमारा नाम मीना गुप्ता है।
1: मीना गुप्ता, श्रोता आप लोग भी जाना जात हुई और हम लोग के पहले के हमारे लोग से बहुत पुरान जुड़ी है कार्यक्रम, जब रेडियो बहुत दूर दूर तक चलत रहा, रेडियो बहुत ज़्यादा आदमी शौक रहा है रेडियो कार्यक्रम FM सुने खातिर, तब से हमारे मीना बहनी हम लोग से जुड़ी हैं और आज भी हम लोग साथ में हन। तो आज इनके कुछ कला है जो हम लोग के इनके हम लोग के अवधी समाज में कहा नहीं जाता कि अवधी भाषा जो हम लोग बोला जाते हैं वही भाषा में गीत संगीत के तो बहुत कमी है, समस्या है, हम लोग गीत संगीत नहीं पावा जाते हैं। तो ऐसी अवधि भाषा में हम लोग के जो लेख रचना है, हमरे मीना बहनी के पास कुछ लेख रचना है, और साथ ही जन्माष्टमी भी रहा है कल, है नी।
0: हाँ।
1: कृष्ण जी के काल जन्म भवा है। हाँ। तो जन्म भवा है तो आप काल कृष्ण जी के जन्म कह के का लेके आवागा
0: वही के उपलक्ष्य में है ना, बताओ जा फिर।
2: जी, आज हम लेके आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण बधाई।
0: अच्छा,
1: देखा जाए तो आपका भी पहले से तैयारी की है, बधाई है। और साथ ही आप बताए तो दिया का मीना नाम है, गुप्ता नाम है, लेकिन आप रहा कहाँ जाते हैं?
2: जी, हम तो मनकापुर 8 रांझा में रही थे।
1: अच्छा, अब मनकापुर 8 नहीं रहेगा, अब मनकापुर 20
2: होगा,
1: नगर में होगा। पहले हम लोग वार्ड में रह जाते रहे, तो वार्ड में जब मनकापुर गाविसा रहे, अब हम लोग नगर पालिका में, लेकिन आप अभी कहाँ रहा जाते?
2: अब अभी हाल के लिए हम कोहलपुर 5 रजेना में रही थे।
1: हाँ, ये बात, यही चीज तो आपसे हमको भाग चाहिए थे, क्या है कि जो हमारे लोग के मईका का जो बचपना रहा थे ना, वो कहीं ना कहीं से भाई परिचय के अनुसार भी वो ठिकाना भी बदल जाता ना।
0: हाँ, बदल जाते
1: तो ये ठिकाना अनुसार हमारे बहनी का पहले के पता देखो, उनका चीज वही दिमाग में रहा थे मिठास कैसे दिमाग के जहाँ आदमी के जन्म भवा। और शायद आप कान्हा जी के कल जन्म भव ही मारे अपन जन्मभूमि बता।
0: जी हाँ, जन्मभूमि।
1: सखी आप कहाँ रहती हो?
0: हम हाँ बस आप समझ जाओ कहाँ रहे थे। अच्छा सखी अब थोड़ा लंबा नतानों का अब सब ठिकाना हम बता देवे हम कहाँ रहे थे कहाँ ना रहे थे।
1: चलो हम समझ गए।
0: और हम और जो है बधाई भी सुना चाहिए, बधाई का गीत भी सुना चाहिए। थोड़ा समझा करो
1: बस समझ
0: वक्त के नजाकत का।
1: वक्त के हम नजाकत का समझ गए, आपके नजाकत भी समझ गए। अब चला जाए
0: नजाकत। लो ठीक है और का चला जाए। इसके बाद हम लोग प्यारा सा गीत संगीत के साथ आवाज है, फिर हमारे सखी जो पूछिए तो बतेबे हम
1: न पूछबे तो न बताए। अब चला जाए चला जाए।
3: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
4: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
3: हो र? त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
4: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ। र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
3: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
5: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
6: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
7: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
6: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
7: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
8: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
6: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
7: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
8: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98614169।
9: नमस्ते दाई।
10: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिन पछि देख्यौ त भाइ।
9: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
10: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
11: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
12: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
13: हाम्रा विशेषताहरू:
12: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
13: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
12: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
13: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
12: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबिएफ काठमाडौँका निसन्तान बाझोपन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यबाट उपचार तथा परामर्श सेवा,
13: अत्याधुनिक प्रयोगशाला इको कार्डियोग्राम इको ईसीजी डिजिटल एक्सरे सेवा,
12: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा,
13: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा,
12: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि एनआइसी एसिया बैङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला कारकान्तो चोक नेपालगञ्ज,
13: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
14: रंग बहार रंग बहार
15: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
14: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
15: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि, घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
14: बर्जर पेंस।
16: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
17: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
16: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
17: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू, हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
16: अनकल सेवाहरू,
17: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ, प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
13: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म, साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म।
17: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
13: कोहलपुर क्षेत्रमा शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्दै गएको डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। यहाँको अनुशासित वातावरण र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिले सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य विशेषता भनेको अनुभवी शिक्षकहरू, अनुशासित वातावरण र अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण पद्धति हो। क्याम्पसले हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड मार्फत आधुनिक ढङ्गले अध्यापन गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले यस संस्थालाई बढी रुचाउने गरेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायतर्फ बीबीएस र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ बीएड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँ कम सुलभ शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै विद्यार्थीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनार र कार्यशाला गोष्ठीहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिन्छ। विशेष गरी स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा अनुरूप रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको भविष्य सक्षम बनाउने प्रयास क्याम्पसले गरिरहेको छ। यस संस्थाले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बिहान 6 बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्याम्पस भित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको छ। 15 वर्षदेखि निरन्तर अध्यापन गराइरहेका अनुभवी प्राध्यापकहरूको संलग्नताले गर्दा यहाँको शिक्षाको गुणस्तर थप सुदृढ बनेको छ। भविष्य निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको यस संस्थाले यस क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ।
16: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा एक महीने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ।
18: कोहलपुर नौ हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एक महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
19: प्रदान गरिने सेवाहरू:
16: गर्भवती जाँच सेवा, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतो पानी बग्ने समस्या,
18: एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी,
16: पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसुति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ।
18: सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
20: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
21: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
20: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
21: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
22: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
23: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
24: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
25: छी डाडु, हो फे ठाहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
24: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे बाबु?
25: उहाँ त अनमोल, उषा व ताज ब्रांड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री व मरमट कई जिठा। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा हो सामान फे पाजिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
26: एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्यौहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
24: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
16: आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
27: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट अट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
16: उपलब्ध सेवाहरू:
27: ईसीजी, इको, टिएमटी, 24 घन्टे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
16: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10-30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
27: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 98-215-97-532। ठेगाना गणेशमान चोक, भेरी अस्पताल जाने बाटो, नेपालगञ्ज।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: हाँ तो गीत तो सुना गा है ना?
1: हाँ गीत सुना गा और घरन घरन माँ हर जगह मंदिरन माँ कान्हा जी के जन्म भी भवा है। और उसके साथ साथ अब कान्हा जी के बहुत से जो बचपना के जो उनके कहानी है
0: हाँ
1: नटखट तो रहिबे करें, बाल अवतार सब बच्चे नटखट रहा थे, ये सब देखे माँ का हो तो अपन बचपना भी बहुत जना याद कर लेते हैं, है नहीं सकी। अब हमरे स्टूडियो में जो हमरे बहनी बेटी मीना, अब मीना से पूछा जाए कि मतलब कुछ लाई है
0: हाँ
1: नहीं, कुछ
0: हाँ
1: लाई
0: तो
1: है
0: सुनावा जाए
1: तो
0: मीना
1: उनके,
0: जी, है ना, का चीज है
1: हाँ
0: ना?
1: कौन चीज है भाई हमहू लंग, और कोई बात नहीं है जैसे कहा ना जाता है जब कोई के आदमी के धीरे धीरे धीरे कला उजागर होते हैं, तो हम लोग उस चीज़ का कला का है। इसे संपूर्ण श्रोता सखी लोगों से हम लोग कहा जाता है आप लोगों के पास भी कोई कला है तो का दबाए के न रखा जाए, धीरे धीरे आपका प्रयास करा जाए, एक न एक दिन उमा तो उजाला पड़बे करी। तो ऐसे हमने मीना बहनी भी लाई है भाई, लेकिन आज पहली बार हम लोग भी सुने जावा जाते हैं, तो का लावा का है बतावा जाए।
2: हम आज लाए हैं कृष्ण जन्म बधाई।
1: कृष्ण जन्म बधाई, मतलब कृष्ण जी के जन्म काल भवा है, अब भाई बधाई तो है ही है नहीं, चारों लंग बधाई न बधाई
0: हाँ,
1: बैठे
0: चारों
1: हैं,
0: तरफ बधाई न बधाई है श्री कृष्ण
1: तो
0: भगवान के
1: यही
0: जन्म
1: को
0: भवा है
1: उपलक्ष्य
0: तो।
1: माँ आप सुनावा जाए, और जौन हो सके हम हूँ लोग भाई साथ देम तो आगे
0: हाँ
1: नहीं है,
0: बिल्कुल, हम
1: लेकिन
0: लोग
1: का
0: साथ
1: होते
0: हैं।
1: कि हम लोग साथ दे दे कबो को हमसे लोगों से गलती हो ही सकत है, तो
0: हाँ
1: आप शुरुआत करा जाए तो हम लोग साथ
0: हम
1: दिया
0: लोग
1: जाए।
0: पीछे से साथ दिया जाइए, है
2: आज
0: ना?
2: जन्म में है कृष्ण कंधाई गोकुल माँ बाजे बधाई,
1: आजू
2: आज जन्म में
1: है
2: है
1: कृष्ण
2: कृष्ण कंधाई
1: कन्हाई
2: गोकुल
1: गोकुल
2: माँ
1: में
2: बाजे बधाई,

0: खुश हूँ।
1: बाजे बधाई, बहुत अच्छा रहा है ना।
2: नर्वस ना हो जाए, अभी आओ हम लोग साथ देते रहे,
1: हो जाते ऐसे है ना सखी।
2: चलो बहुत बहुत धन्यवाद है,
1: इतना मतलब इतना अच्छा से आप गावा गा है ना।
2: हाँ बस हम लोग का होता है कि हम लोग कोई अब चीज आपके लिखा गाना हो आप गावा जाते, अब हम लोग बीच बीच में बोले कोशिश करना चाहते कि कहाँ से पकड़ पावा जाए नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है आपके ही लेख।
1: बधाई तो बधाई, कैसे काहे कि जन्म जब होते तो बधाई तो देख पड़ते सखी है ना।
2: हाँ और फिर उसके बाद नंद बाबा जो जब जन्म भवा रहा तो यशोदा मैया और नंदलाल जी का तक खुशी रहा है, क्यों खुशी से पूछो ना कि पूरे गांव पूरे राज्य भर में मिठाई बटी रही भाई खुशी के बाद की कृष्ण कन्हैया के जन्म भवा
1: जन्म है। ऐसे ही पूरे सब जगह विश्व भर जब जहाँ जहाँ जन्म होते हैं कृष्ण भगवान के, सब जगह ही खुशहाली के माहौल भी रहा है कल रात में, और मंदिर भी सजा रहा है, घर में भी सजा रहा है ना, और जन्म होए के बाद खुशहाली में यहाँ भी प्रसाद लोग बांटा थे पता है सकी, जैसे 12 बजे जब तक जन्म ना हो जाते तब तक सबका सहारा आ रहा थे नहीं कि मतलब अभी जन्म हुई है, सब जागे रहा थे यहाँ तक बच्चे तक जागे रहा थे है ना।
2: हाँ कि 12 बजे जन्म हुई, 12 बजे
1: और टाइम देखा करिए घड़ी देखा 12 बजे का, 12 बजे
2: लग रहा थे ना,
1: झूला झूला लग रहा थे इके वजह से,
2: झूला एक बात तभी सोवा जाए। अब फिर बहुत जना सा कि यो तो रहा था उपवास रहा था व्रत रहा था, तो जब पूजा के बाद जब
1: निराजली जब व्रत रहा थे जो लोग हाँ
2: पूजा के बाद जब प्रसाद जब चढ़ा थे वही प्रसाद ग्रहण करके पानी भी पिए थे,
1: पानी भी पिए
2: के कारण से बहुत जना व्रत उपवास, कोई फराहरी रहा थे, कोई निराजली रहा थे, कोई दिन भर मतलब निराजली रहा थे, शाम के सादा खाना भी खाते हैं पूजा के बाद, तो ऐसे कई किस्म के व्रत उपवास रहा थे, लेकिन 12 बजे के बाद सब कार्यक्रम खत्म होते
1: हैं।
2: जब उनके खुशियाली मन जाते जन्म हो जाते तभी उनके बाद पानी पी के आदमी प्रसाद खा के पानी पिए थे।
1: और फिर सखी अब तो घर घरन में यहाँ सब जगह अब 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक मतलब छठी हुआ करिए, छठी होते हैं मनावा जाते हैं बधाई
2: और क्या कहते हैं भगवान की बधावा, सब लेके आदमी यही गाना बजाना हर जगह मंदिर में शाम के आवाज आवा करत है, कहे से कि भगवान के अपन भजन रहा थे बधानी बधावा रहा था, ये सब चीजें का हो कि वहाँ ललन के जन्म भवा है,
1: जन्म भवा।
2: अब जन्म के बाद की जब तक अब छठी हुई न जाए तब तक भजन कीर्तन चला करिए है ना। अब मंदिरन में रहा था भजन कीर्तन चार लोग जाते हैं शाम के टाइम में आरती के टाइम में भजन होते है, अब आजकल का होते घरन में
1: भी, घरन में
2: भी अब घर घर आदमी का करा जाए कि पहले अब मैं यही फर्क है सके कि पहले कोनो भी समुदाय के अंदर मंदिरन माई चीजन के उत्साह घर में तो सबको उपवास रात रहा है, लेकिन मंदिरन माई के उत्साह चारों गांव के मतलब चारों लोग महिलाएं पुरुष मिलके बढ़िया से धूमधाम से मनावा जाता है,
1: मनावा जाता
2: लेकिन अब आज के समय का है कि एक दूसरे से संपर्क थोड़ा कम हुई गुआ है जिसके कारण से हर कोई

0: लोग अपने घर में भी कर लेते हैं, लेकिन पहले भी रहा है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ लगत रहा है इसके वजह से। खैर सखी बातचीत तो करते रहा जी है ना, और मीना बहनी भी बहुत अच्छा सा मतलब बधाई गीत भी सुनाई है ना,
1: हम लोग थोड़ा बहुत धन्यवाद है। और तब तक आप कुछ सुना दिया जाए ना।
0: अच्छा हमसे भी सुनो,
1: बस आप खाली बोले हो, बोले
0: ना करो खाली बस,
1: तो सुने के का हम लोग का सुने के मन है भाई, तो कहना सुना जाए।
0: ठीक है अच्छा थोड़ा सा सुने के मन होए, छोटा सा जो है व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए, पड़ी का सुना जाए।
1: ठीक है सुने के तैयार है ना।
0: ठीक,
2: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसन द्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्ड द्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक
3: विशेषताहरू। दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू, दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
7: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करेना कहटु।
8: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
7: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त?
8: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार गर्न सँगे एनआईसीयु, पीआईसीयु, आईसीयु, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
7: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
8: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो, कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
9: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध।

0: है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697 9858236697 और 9804483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
2: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेन्सले।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका.
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए. हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है. उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है.
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है.
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए. संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037.
4: नींद ना हमको जग
2: सोना. भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही.
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यह नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए. वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है. अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है.
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया.
5: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है. और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है.
6: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं. आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए.
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ. संपर्क नंबर 9769411786 9824392377. सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य.
7: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज.
8: हरेक सामान को खरीद में 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी साथै फ्री डेलिभरी को सुविधा पनि. अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ.
7: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि.
8: सम्पर्क 9705118470.
7: सोफा हब नेपालगंज,
8: विश्वासमा नम्बर 1,
7: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट.
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है.
5: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है. जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
5: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं. हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है.
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है.
5: संपर्क नंबर 0185364665 9249808665 और 9842804665.

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: सखे।
1: हाँ सखी,
0: गीत संगीत जो हम लोग सुना जाते हैं,
1: हाँ?
0: तो वैसे भी अब कान्हा जी का जन्म देखा गया है, देखते देखा तो गीत संगीत में हम लीन हो जावा जाते हैं, नहीं? लेकिन नींद बहुत लागत है सखी,
1: अब रात भर जागा गा है ना एक वजह से।
0: हाँ।
1: अब ठीक है तो,
0: लेकिन नींद का है कि नींद भगावे खातिर में मीरा बहनी और मीना बहनी जो हमारे साथ में बैठी
1: है, हाँ, वही हम कहें कि ठीक है मीना बहनी कुछ सुनी है तो नींद जो है आँख खुली है का?
0: वैसे आँख ना खुली है,
1: अरे आँख खुला था इसी बात नहीं, आप तो सखी तर्क के भीतर के निकाल देते का ना बीत, अरे हरा वही मतलब कोई बात के बिना बात के आप बात बनाए लेते का,
0: बनाए नहीं है बात के खाल निकाली थे कहा ना,
1: हाँ वही बात है,
0: बात के बात बनाए लेते हैं हम, कसके बात बनाए लेते हैं। अच्छा मीना बहन हम कौन बात बनाए लेते बताओ,
1: नहीं बात तो नहीं बनाए, नहीं देखो अब आप कभी बात खाल निकाल लेती बाल्की। अच्छा चलो कोई बात नहीं छोड़ो, यही बात एक छोड़ो नहीं तो बात बढ़ते जी, देखो आप देखो मेरे सखी की आँख खुल गवा, अब लड़े भैया है आगे हैं का?
0: तो यही नहीं जब वो थे तभी तो नींद भागत है।
1: अच्छा कि हम कहा है कमेंट
2: सखी के प्रेम से
0: प्रेम सखी के प्रेम हो भाई, नोक जोक एक हफ्ता बात करा जाते, एक हफ्ता का तेरे स्टोर में
1: प्रेम हो तभी देखो मेरे आँखी हमारे सखी की आँखी फट से खुल गवा, चलो यही जरिए से तो खुला,
0: तुम प्रेम हो प्रीत हो मेरे
1: सब हो
0: तो इधर हमरे
1: चलो हमरे मीना बहनी भी कुछ सुनाए
0: है भाई, प्रेम रचना है जो लिखी ने अपने मतलब अपने मन ढंग से तैयार की है तो सुनावा जाए।
1: अरे खांसी है तो क्या करी
0: सुनावे की, इधर कहीं तक खांसी आपकी गला साफ कर रहे हो,
2: हम लिखे हैं
1: अरे साथ में देखे
2: कृष्ण भगवान के जन्म के,
0: हाँ तो कृष्ण भगवान के जन्म तो भैया जन्म उनके तो निराली है, एक साल से सहारा देखा जाते, सुनाओ फिर।
2: जय जयकार भवा जग भीतर, जय जयकार भवा जग भीतर प्रगट भये श्री भगवान हो, जय जयकार भवा जग भीतर प्रगट भये श्री भगवान हो, आवे जे कान्हा के शरण में पूरन मन के अरमान हो।
0: हाँ सही बात है
1: बुआ,
2: ललना भये भादव के अन्हरिया, ललना भये भादव के अन्हरिया रतिया में बिचवा नदिया के छहरिया।
0: हाँ यत्ता नदी गंगा माता तब भरे रही फिर भी उनके अपने जगह में स्थान उनके पाए लिहिन।
2: दियो देवकी के गोदिया मा सो है, दियो देवकी के गोदिया मा सो है कि भये रामा जलवा मा उजियार हो, जय जयकार भवा जग भीतर प्रगट भये श्री भगवान हो,
1: श्री भगवान हो।
2: माथे पे मुकुट सोहे हाथन मा मुरलिया,
0: हाँ।
2: माथे पे मुकुट सोहे हाथन मा मुरलिया रूप अति मन भावे हो, जय जयकार भवा जग भीतर प्रगट भये श्री भगवान हो। वसुदेव जी उठाइन डलिया पहुँचिन गोकुला के नगरिया, वसुदेव जी उठाइन डलिया पहुँचिन गोकुला के नगरिया, छमछम नाचे बज्र के नारी, छमछम नाचे बज्र के नारी बिरज के नारी, छमछम नाचे बिरज के नारी, जन्मे हैं आज कृष्ण मुरारी, बाजे बधाई यशोदा मैया भई निहार हो, जय जयकार भवा भीतर प्रगट भये श्री भगवान हो,
1: श्री भगवान हो।
0: वाह वाह
1: बोलो जय श्री राम भगवान की जय,
0: और उनके लीला के ऊपर है कि हाँ कृष्ण भगवान के
1: कृष्ण भगवान
0: हाँ। उनके मुरली के तो पहचान है क्योंकि धुन में सब लोग मोह जावा जात है।
2: इमा अभी दो लाइन और है,
1: जरूर सुनावा जाए।
2: काली यमुना चरणन पखारे शेष नाग छतर ओढ़ावे,
0: हाँ
2: काली यमुना चरण पखारे शेष नाग छतर ओढ़ावे, गोप ग्वाल सब मंगल गावे, गोप ग्वाल सब मंगल गावे, रत्न जहावर खुशियन में लुटावे, संकट टाले रास रचाई नटकट कन्हैया भये अवतार हो, जय जय भवा जग भीतर प्रगट भये श्री भगवान
1: हो,
0: जय कृष्ण
1: जय कृष्ण जय श्री।
0: अब कहा ना जाता है कि सही बात है, गंगा माता की एक तरफ उनके पैर छुए कतिर उबार खाओ थी, और दूसर तरफ ऊपर पानी बरसत है जिसे कान्हा जी भीजे न कह के शेषनाग जी अपन फंड से छतरी ताना था,
1: छतरी
0: पानी न गिरे
1: और अपने पैर का बाहर निकाल देते हैं कि ताकि गंगा जी शांत हो जाए, हाँ, गंगा जी पैर छू ले उनके
0: बस शांत हो जाती, कैसे उधर उनका मतलब पानी के उभार में उनका व्यापार करे के रहा था। तो ऐसे सही बात है, उनके रासलीला और जो जन्म लीला है दोनों चीजन के तो
1: भगवान की लीला भगवान ही जाने।
0: और इतनी गोपियां रही उनके कि सोचो ना कि गोपियन के उनके जो बांसुरी के धुन रहा थे कि कहीं से भी दूर से उनके तनिया धुन जो बांसुरी बजत रहा है तो तनत चले आवा
1: तने चले आवत रहे और जो भी काम करत रहे वो काम करते रह जाते रहे लेकिन सब मोहित हो जाते रहे बांसुरी के धुन में। यहाँ
0: हाँ वैसे सखी अभी बात सही बात है मीना बहनी, आप बहुत बढ़िया लिखा जाता है और ऐसे लिख के जो लिखा जाता है ये काम आप
1: संदेश मूलक तरीके से रहा है,
0: हमेशा हिमा धीरे धीरे आपके रंग आई और ऐसे आप बरकरार रहा जाए,
1: ऐसे ही प्रगति करते
0: रहा जाए, प्रयास आप बंद ना करा जाए वैसे प्रयास करता रहा जाए। हमारे लोगों की शुभकामना है आपके साथ है, बहुत बढ़िया है कि जो मन के लेख होते ना मन के जो हम लोग मन से सोचा जाते है जिसका हम लोग कलामा उतारा जाते है वो चीज में निखार धीरे धीरे आवत जरूर है। तो सखी हम लोग इधर बातचीत करा जाते हैं ने,
1: हाँ सखी बातचीत तो करा जाते हैं। और सखी एक तरफ तो खुशी के माहौल तो है ही है ना,
0: हाँ
1: श्री कृष्ण भगवान के जन्म हुआ और भक्तन लोगन के यहाँ भी जो है खुशी तो है ही लेकिन साथ में एक ये भी है भगवान से हम लोगन का आस भी है जो ही हमारे मतलब बाकी जो
0: बाढ़
1: जो वहाँ पर
0: है
1: तो हम लोग बहुत दुखी भी बहुत लोग दुखी भी हैं, हम लोग सब कोई दुखी हैं मगर भगवान से हम लोग यही
0: प्रार्थना
1: करा जाते हैं कि अब इस देश में यहाँ कभी कुछ ना होए, आगे आगामी दिन में यहाँ अगर कुछ होए वाला होए तो फिर वो चीज ना हो पावे आपके आशीर्वाद से।
0: हाँ प्रार्थना के अलावा नहीं सका जाते कैसे न हो लेकिन फिर भी जो संकेत है खतरा के ज्यादा
1: वही बात है
0: और कहा ना जाता है कि हम लोग तो अभी अति दूर हन नेपाल में हन लेकिन अभी अति दूर हन जो सुन के अत्ता भयभीत हुआ जात है नहीं जो प्रत्यक्ष हैं जो हुए हैं घर परिवार विहीन हो गए हैं परिवार से मेल नहीं है परिवार पूरा परिवार नाश है ना ऐसे ऐसे चीजें अभी काल है कत्ते सुरंग से निकाले गए हैं वहां से कत्ते लाश एक के जगह मिले हैं
1: ओके
0: बाद काल फिर दरचूला
1: बाल बच्चे भी बेघर हो गए
0: हैं नहीं तो ये दिन प्रतिदिन जो हम लोगों के जो सूचना है जो न्यूज सुना जाता है खबर सुना जाता है जिसके कारण से त्योहार तो है ही है त्योहार तो अपने कला संस्कृति का जगह पर हम लोग मनाया जाते है लेकिन जहाँ पर ठिकाने नहीं है जहाँ पर कोई चीज के नहीं है कि ऐसा भयभीत हुई कि आदमी जो बचे हैं वो भी अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पावत हैं अतः भयभीत हैं तो ऐसी जगह पर अब भगवान रक्षा करें है ना अब भगवान।
1: हाँ सखी सही बात है प्रार्थना है कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया जाए कि वो प्रकोप फिर से दोबारा ना आवे।
0: हाँ
1: हम लोग जिसे भगवान के ही हाथ में सब कुछ है हम लोगन के जीवन भगवान के ही हाथ में है सखी है कि नहीं
0: सारा चीज अब हम लोग प्रार्थना है उन्हीं के ऊपर है और जो भी करत है सही इनके लिए करा जाए और जो भी अब आए वाला जो कष्ट है वो
1: हरा जाए। हाँ हाँ तो और यही बात है सखी देखो ना कितने बच्चे अनाथ हो गए और जो बचे हैं जो बच्चे बच गए हैं उन लोग अनाथ हो गए माँ बाप से और घर द्वार भी सब एकदम खत्म हो गया जहाँ बाढ़ आवा और संकेत भी अभी भी दिखाई पड़त है लेकिन हम लोगन का अब यही है भगवान से विनती प्रार्थना है कि ऐसा आप कुछ ना होए अब जो भी कुछ हो मुसीबत संकट आप हरा जाए भगवान श्री कृष्ण भगवान से यही हम लोगन का प्रार्थना है। दुख के तो माहौल है ही सखी है ना लेकिन आज तो हम लोग यही करा गा है
0: का होता है अभी भी जो संकेत है कत्ते जिला में अभी अलर्ट किया गया है कि फिर से ही संकेत के खतरा है जहाँ जहाँ तो अब आगे का है कि अभी तक थोड़ा थोड़ा मनोबल जो रहा है अब और टूट जाते
1: हैं
0: कि जो भयभीत पहले अभी एक जगह सुना गया रहा है अब कई जिलन पर वो भयभीत के मतलब प्रकोप है कहते हैं है ना अब का हुई कैसे हुई और कैसे अपने आप का बचावा जाए ये तो भगवान ने ऊपर वाले जाना था
1: ऊपर वाले ही जाना था।
0: ठीक है सखी चला जाए कार्यक्रम के आगे है ना हम लोग ऐसे बातचीत करते रहा
1: ठीक है सखी अभी हम लोग व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए एक बाद
0: ठीक है चलो।
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो कम्प आउँछ। श्री FE 550D

0: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
1: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
0: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
1: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
2: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
0: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
1: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
2: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
3: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
4: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
3: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
4: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
3: कस्तो खबर?
4: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
3: ए, साँच्चै?
4: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
3: ए, त्यो त झन् राम्रो
4: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS, MD KU, IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
3: वा, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
4: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
3: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
4: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
3: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: नाक, कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
6: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक, कान, घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9580303479 र 9840213680।
7: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
7: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
8: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU, PICU, ICU, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
7: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 081535717।
9: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। एतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
9: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848020697 9858023697 और 9804483697।
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
10: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
5: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
10: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
5: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
10: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
5: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज
10: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज
5: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते
10: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
5: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
10: संपर्क नंबर 081536465 9249808665 और 9842804465।

0: हाँ सखी बोलो,
1: कहा बोली सखी आज तो सही बात
0: लगा
1: है।
0: था सुस्त हम कहा समझन की सोई गई।
1: नहीं बात वो नहीं है, बात आपो जो निकाल दिया गया है ये जो चीजों हम
0: अच्छा,
1: लोग
0: हाँ, वो बात तो सही
1: भाई मीडिया जो ऑनलाइन मोबाइल है ना ऐसे कि मोबाइल जैसे खोलो वही खबर चारों तरफ से वही दिखाई देते हैं। आप बात भी निकाल दिया गया है सखी, है नी अब कई जगह से बहुत जना डोनेशन भी पठवत हैं दान, है नी हर लोग अपने कमाई अनुसार अपने श्रद्धा अनुसार
0: सब सहयोग
1: पैसा
0: भी
1: उठाए
0: करते
1: के
0: हैं।
1: भी देश विदेश हर कोई दे रहा है। लेकिन का है कि जो चीज अपने हाथ में नहीं रह जाते है जो कि अब देश भर में एक मुख्य भूमिका जानो खोपड़ी एकदम से टूटा है अब वो चीजन में का होते कि कोई कहाँ पाइस कोई नहीं पाइस,
0: कोई
1: है
0: पाइस
1: नहीं
0: कोई नहीं पाइस, बात सही
1: जे
0: है।
1: नहीं पावत है वो ऐसे दुखी तो है ये है, और जो पावत है वो अब कत्ता उमा से जो भी पावत है खाए पिए कतिर तो उनका जब 24 घंटा उनका समस्या है तो थोड़ा सा खाए पिए से भी उनका का उद्धार हुए थे। और फिर देखा गया सखी कि कोई कोई तो परिवार में मेंटली में चले गए हैं परेशान हुए के कोई पागल तना हो ही गया है अब जी के पूरा कोई है ये ना है
0: कोई
1: कोई
0: है ये
1: एक
0: ना है,
1: आदमी
0: नामो
1: बचत
0: निशान मिट गया
1: है नहीं
0: तो
1: परिवार के
0: फिर
1: हर कोई बच्चा महतारी बाप हर कोई जा चुका है एक लोग बचत है कोई के महतारी खाली बची बाकी परिवार नाश है नहीं कोई के कोई वृद्ध एक बाप बचा है पूरा परिवार नाश है और
0: पूरा
1: कोई कोई
0: परिवार
1: का
0: ना
1: तो
0: से, कोई बच्चा ही
1: परिवार
0: बच्चा
1: नाश
0: है
1: है।
0: तो रोवत है बच्चा, मम्मी
1: हाँ
0: कहाँ हो, है ना।
1: वैसे
0: तो
1: हमू
0: बस सही
1: लगा था
0: बात
1: सखी
0: है।
1: कि डाटा जो अनुसार है रिकॉर्ड जी के परिवारे कोई ना रहेगा हो उनके डाटा आवे में तो अभी समय लगी जैसे माँ जी के कोई है तो आप गुहार करत है नहीं नाम आए जात है कि आदमी गायब हुआ है या एक नाई है या हमारे परिवार में इतने जना नाई मिले हैं।
0: बहुत से लापता हो गए हैं, पता ही नहीं चला है लाश के।
1: अरे सखी काल न्यूज में जैसे समाचार देखा जाते कि जो गुफा में रहे सुरुंग में एक कई जगह लगभग कते 50-57 लाश एक कई जगह में मिले हैं और बतावा 10-12 दिन होन जात है बहुत जना भी माँ जिंदा भी रहे जिकर निकाली नहीं है तो वो चाहला माँ
0: चालम
1: जैसे
0: है।
1: कहा नहीं एकदम मार तना चाहला माँ और 10-11 दिन कैसे बिताइन हुई है कैसे माँ जिंदा है नहीं और ना माँ उजेर है ना कुछ है सुरंग के अंदर ऐसे अब सुरंग के अंदर तो कहा जाए नदी नाला में जो बहाव आवा जो ले नहीं ले ही है जो माटी के साथ है बारू के नीचे भी कत्ते जम चुके हुई हैं
0: जम चुके
1: कत्ते
0: हुई
1: तो
0: है, फिर
1: अभी
0: वहां
1: नदी के बहाव
0: पट भी
1: में
0: गई हुई है,
1: जरूरी
0: बहाव
1: नहीं
0: में
1: है
0: भी
1: कि
0: बह
1: अपने
0: गए,
1: देश में रहेगी अंत अंत भी नदी
0: अंत अंत
1: कहाँ
0: भी
1: कहाँ
0: देश
1: गवा
0: में यहाँ
1: कहाँ
0: भी।
1: कहाँ भी
0: हाँ
1: नाश जा
0: सकी,
1: चुका हुई।
0: हाँ सकी, सुने में भी आवा है कि बहुत से जो है पानी में ही बह गए हैं,
1: हाँ
0: बहाव के वजह से बह भी गए हैं कितने लोगन अपने ही देश के बाहर भी। तो बहुत जो है लाश के पते नहीं चलत हैं, तो कहीं पैर मिलत है तो हाथ मिलत है
1: हाँ
0: कट गए हैं,
1: सखी
0: जिसे
1: कि कोई चीज में
0: तो
1: मतलब सुकून नहीं है
0: सुकून
1: कि
0: नहीं
1: घटना
0: है।
1: होते आदमी की घटना भवा इ मेरे घटना होई गवा आते जना है आते जना
0: अच्छा
1: नहीं है
0: हाँ,
1: लेकिन इमा तो पते नहीं चलत है
0: पते नहीं
1: ना।
0: चल। अच्छा सखी, हम लोग कभी कभी सोच, कोई भी इंसान ना सोचा रहा हुई है
1: हाँ
0: कि
1: ऐसे पहले
0: ऐसा
1: तो हम लोग ना
0: ऐसा
1: सोचे रहे ना
0: दिन आई है
1: कभी
0: भी
1: सुना गया है ना
0: नस
1: देखा
0: देखा
1: गया
0: गया
1: है
0: ई मेल के
1: नहीं
0: आवा।
1: कि
0: हाँ
1: बाढ़ आवत रहा है बाढ़
0: बाढ़ आवत
1: डुबान
0: रहा है,
1: होवत
0: लेकिन
1: रहा
0: इस
1: है
0: तरह ना
1: तो
0: आवत
1: आदमी
0: रहा।
1: सतर्क हो जात रहा है कि भाई मूसलधार पानी बरसत है तो आप सतर्क हो जाओ रात भर पानी भर के नदी के सतह बढ़ सकत है तो आदमी
0: और
1: अपने आप का बचाए लेत रहा है
0: हाँ,
1: ऊंचे चला जात रहा है घर छोड़ देत रहा है
0: या तो फिर
1: डुबान में
0: जैसे,
1: भर
0: हाँ
1: के।
0: या तो फिर जैसे भूकंप के भी आशंका रहत रहा है, शंका रहत रहा है, तो आप
1: हाँ
0: उस मतलब सचेत सचेत हो जात रहा है, अपने सब परिवार का बाहर निकाल देते रहे, भूकंप आए वाला है, सावधान हो जात रहे।
1: हाँ
0: लेकिन ये ऐसा प्रलय आवा कि पूरा दुनिया ही तहस नहस होएगा, अपने साथ सब लेगा ये
1: का
0: मेर
1: कर
0: के बाढ़।
1: सकी अब हम लोग के बस कह के भी कुछ नहीं कह सका
0: कुछ
1: जाते
0: नहीं, बस यही है
1: अब
0: कि
1: ये बात
0: अब
1: बनी
0: प्रार्थना के
1: देश के
0: अलावा हम लोग।
1: खातिर हमरे मीना बहनी भी कुछ पढ़े चाहत है लेके आई
0: हाँ
1: हैं तो आपो सुनावा जाए हम हिंदू जना कत्ता बोला जाए है नी आप चुप पे हो आपो के बुलाए बुलाए के हम लोग बुलाए लगा जी पूरा।
2: हाँ हम भी रचना लाए हैं नेपाल के सैलाब माँ रोवत ममता। नेपाल की धरती आज कहरात है नेपाल की धरती आज कहरात है हर नदियाँ आंसू बन के बहत हैं कैसन कहर बर्फ प्रकृति माई कैसन कहर बर्फ प्रकृति माई कितने घर की घर के बुझ गई ललाई।
1: सही बात है कत्ते के दिए बुझ गए
0: दिए बुझ गए, पूरा नामो निशान ही मिटेगा।
2: कल तक जहाँ हंसी उजियार रहा है कल तक जहाँ हंसी उजियार रहा है, आज वही अंगना माँ मातम पसरा रहा है, आज वही अंगना माँ मातम पसरा है। कहूँ माई के गोद सुनी हो गए, कहूँ तो माई के गोद सुनी हो गए, कहूँ बाप की आँख रह ताकत रहा है, कहूँ बाप के आँख रह ताकत रहा है। माई पुकारत लाल कहाँ गयो मोरा, माई पुकारत लाल कहाँ गयो मोरा, नदिया चुप ना कोई देत जवाब तोरा। बहन के हाथन माँ, बहन के हाथन में हाथन माँ राखी अधूरी, भाई बिन लागे दुनिया सब सोनी। कोई घर माँ चूल्हा नाई जरत है, कोई घर माँ चूल्हा नाई जरत है, कोई घर माँ दीपक नाई बरत है। जिनके सपनन से सजत रहा संसार, आज वही सपना माँ बही गए धार। नेपाल की धरती आज कह रात है, हर नदिया आंसू बन के बहत है।
1: वाह, सही बात है मीना बहनी। जो लिखा है वही चीज घटना भी है कि नेपाल आज कह रात है और रोवत भी है खून के आंसू, जिसका हम लोग चाहे के भी नहीं बचा सका जाता है, और न चाहे के कोई के घर का उजागर कई सका जाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ दुख ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ के कोई सदस्य पूरा बच गए हों। अब महतारी के बनसनाई रहेगा है नी, घर के चिराग बुझी गए, बाप का कंधा दे वाला लड़का जो कि बच्चे कि उनका काल हमका पली है, आँखी के तारा कहा जाता है, वो नहीं रहिए, बाल बच्चे यतीम हो गए। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं कि भाई बहन के तो रिश्ता है ही है, भाई बहन के रिश्ता रक्षाबंधन भी गवा, कत्ते घरन के तो सुनी। अब रक्षाबंधन के अपने जगह है ये है, जब कोई रही नहीं गवा और जो रहेगा है वो आधा अधूरा रहेगा है, जिनका संभालब भी उनके संभाले कते भी परिवार नहीं है,
2: बहुत कठिन है पूरे परिवार
1: उनका संभाले वाला समझाए वाला भी कोई होए तो भी नहीं है। तो ऐसे जो देखा जाता है, कहा ना जाता कि जो हम लोग देखा का यहाँ देखा जाता समाचार में या वीडियो में या अब कहा जाए ऑनलाइन, इसे तो मोबाइल है नहीं, हर चीज़ वही है, एक एक क्षण के न्यूज आवत है, एक एक क्षण के वहाँ के का हो रहा है, कैसे कर रहा है सरकार, का कर रहा है देश विदेश के, का सहयोग कर रहे हैं, ये सब हम लोग अभी तो सुन सुन के यहीं में परेशानी है। लेकिन अब जो अगला कहा नएगा है कि कते जिलन का अलर्ट करागा है, शंका के आधार में है कि अभी अत्य जिला भी संकट के आधार में है। अब तो सोचा जाए कि अब क्या करा जाए,
0: अब क्या करा जाए,
1: ऐसा चीज नहीं है कि क्या कैसे बचावा जाए, ये परले का हम लोग रोक भी नहीं सका जाता है, सरकार का भी क्या कहा जाए कैसे रोकें, कैसे परले तो पानी के धार कैसे रोका जाए, ये तो सोचे से भी हमारे नाम को हम लोगों के समझ में से बाहर है, का है कैसे करे के। फिर भी जो जहाँ है आप अपने आप का सतर्क रहा जाए,
0: सतर्क रहा जाए और ऊपर वाले से जो है प्रार्थना किया जाए,
1: जाए
0: कि ई बला टल जाए, ये जो मतलब परले है ये कोई तरीके से भगवान के परले का हटाई दें, यही हम लोग कर सका जाते सकी, इससे आगे हम लोग का कर सका जाते, हम लोगों के भी हाथ में ना ये ऊपर वाले के हाथ में ही है।
1: नेपाल में प्रकृति के सुंदरता के बीच में हम लोग हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता में का होगा, ऐसा का समस्या आएगा जिसके कारण से हम लोग उसके शिकार हो जावा जाते हैं। नदी पहाड़ से भरा है देश, लेकिन नदी पहाड़े के दारे जो भी हैं, जो क्षेत्र महान हम लोग हुआ खतरा के निशानी बन गवा है, और खतरा के निशानी ऐसा नहीं है कि पानी के बाढ़ आवे तो बच सका जाए, ऐसा सैलाब आवा है, अभी सैलाब कहा सका जाता है ना,
0: सैलाब
1: जिसका कहा जाता है कि माँ पानी के धुंध तो पानी की लहर तक ना दिखाते, ऐसा होके धुंध उठा था है नी, कि का समेट ले जाए को चला जाए, कत्ते बिल्डिंगे चली जाती हैं, घर चले जाते हैं,
0: पानी के सैलाब इस तरह हुआ कि पूरा घर कहीं पूरा बहा लेगा, ऊंचा ऊंचा इमारत कहीं भी।
1: हम लोग ये बात तो करा जाते हैं, अब का करा जाए, लेकिन समय अनुसार हम लोगों का भी अपने आप का बहलावे खाइए है, मीना जैसे अपने आप का बहलावा जाता है, अपने आप का समझावे के भी तो कोशिश करे पड़ा, जो है वो होइबे करी, बस भगवान के सहारे है, प्रार्थना करा जाए, आप लोग भी हम सब लोग मिलके करा जाए प्रार्थना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग या कोई ना कोई रास्ता तो निकलबे करी के
0: है। तो ठीक है सखी, अब हम लोग चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ है ना।
3: ओहो, हामी हो हामी बिरामी भए

0: उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू
0: नवजात तथा बालरोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्ररोग विशेषज्ञ, हाड जोड्ने अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
1: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
2: सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुविसु
3: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
4: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
3: विशेष सुविधा
4: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 से 5 तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
5: देर न की जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: देखो ना हम लोग भी अब बोलो बोलो
1: नहीं बराबर पड़ेगा, बात तो वही है।
0: हाँ,
1: आप
0: बस
1: ही कहा जाए पहले,
0: वही बस जो आप कहे छात्र वही हम कहे छात्र हैं, कार्यक्रम के भी हम लोग अंतमा हाँ, पहुंच चुके हैं।
1: बस यही बात है श्रोता, आप लोग भी जाना चाहते कि हम लोग 3 बजे तक रहा जाते हैं, तो कार्यक्रम के अंतिम अंतिम महान और हम लोग के जो स्टूडियो में पहुँचना है हमारे बहनी मीना
0: गुप्ता जी,
1: मीना बहनी भी जो लेख लिख के लाई रही, अपने बनाए के लिख के इतने मेहनत से आई रही और कहीं भी रहा है कि दीदी हम लोग सुनावे के चाहिए थे, तो सही बात है आपके ये कला हमेशा निरंतर रहा है और हम लोग दोनों सखी के तरफ से आपका बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: शुभकामना
0: है।
1: और आप अपने आप का निखारे कोशिश करा जाए धीरे धीरे, कौन सहयोग चाहते हैं हम लोग आप लोग के साथ महान, काश जमाना में पहले जब समय सोचा जाए तो हम लोग भी ऐसे रहें है ना, धीरे धीरे
0: धीरे धीरे
1: जो कहा नहीं जिसका आदत बना ले, तो अब आप कला संस्कृति ऐसे लिखा करा जाए तो आपके एक आदत हो जाए और हर जैसे अवधि भाषा के समय में जब का लेख का छपावा भी निकारब हर चीज का शौक हो तो धीरे धीरे आपका ये चीजन का वो हो जाए, तो मीना बहनी कुछ कहे चाह जाते जैसे मान लो ये जो प्रकृति चलत नहीं है समस्या है तो भगवान से प्रार्थना करके या हम लोगों का संदेश कुछ अपने तरफ से कहे चाह जाते।
2: हम ये कहे चाहे थे भगवान तो ऐसा विडम्बना
1: हाँ,
2: डाल दिन है
1: हाँ,
2: हमारे देश में कि जो स्वस्थ खन मन सब दहल जात है और डेर एकदम समाय जात है कि इतना सुंदर सा हमार देश रहा, इतना सुंदर प्रकृति रहे और उमा ऐसा विनाश आवा है
1: हाँ,
2: कि एकदम परले सब सैलाब कर दी से, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान ये परलय का टाला जाए, बलाय जो है इका ख़त्म करा जाए और हम आप सब कोई मिल के यही प्रार्थना है और सब जो हम लोग हम लोग से भी अपने आप से व्यक्तिगत का सहयोग होते हैं उनके प्रति हम लोग भी करा जाए।
1: हाँ अब सुनागा सब लोग करते हैं सहयोग,
0: हाँ, सहयोग करत भी हैं है ना,
1: बहुत
0: धन्यवाद है मीना जी,
1: अपन अमल समय हम लोग का दिया गा
0: अब
1: है।
0: बिल्कुल
1: हाँ अंत में हाँ ना बोले हमरे सखी अब बंद जानो अब टेक्नीशियन में है अरे तो विदा ले लीन जाए और हमरे हाँ, मीना बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद है,
0: धन्यवाद है, आप आवागा है ना,
1: ऐसे आप लोगों का हमेशा स्वागत रही, ऐसे मीना बहनी तना आप लोगों के पास भी कोई चीज है लेख रचना है सुनावे चाहा जाता तो हम लोग के संपर्क में जरूर आवा जाए, हम लोग भी चाहते है कि हमारे सखी लोग हमारे बहनी लोग हम लोग से जुटे, हम लोग के खुशी के आभार कैसे प्रकट करा जाए ये आप लोग अभी न जान पावा जाए, ठीक है तो सखी अब हम लोग विदा लिया जाते हैं
0: हाँ,
1: बिल्कुल, और अगले हफ्ता फिर कोई विषय के साथ आवा जाए,
0: आवा जाए,
1: तो आज के कार्यक्रम घर अंगना से हम सखी संध्या
0: और हम सखी चंदा,
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: राम राम,
0: शुभ दिन।

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
4: नींद नाए हमको हाए जग
5: सोता है। बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081532375।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
8: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848206697, 9858023697 और 9814883697।
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
8: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
8: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
10: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
8: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377
11: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
12: Back to back. Back to back.
13: In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी